0: शिक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है। ये संबंध सांस्कृतिक मूल्यों, ज्ञान विज्ञान, व्यापार और परस्पर समन की मजबूत बुनियाद पर आधारित है। इस समृद्ध इतिहास के निशान हम आज भी देख और महसूस कर सकते हैं।
1: Candi Prambanan bukan hanya sekedar bangunan sejarah. Ia adalah simbol peradaban besar Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan kemanusiaan.
0: Prambanan Mandir sirf ek aitihasik imarat hi nahi hai, बल्कि ये ज्ञान आद्यतम को भी प्रकट करते हैं।
1: Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan bangsa India karena relief kisah Ramayana yang terukir di dinding-dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa kita.
0: Prambanan Mandir bahut hi mahatvapurna hai dono desho Indonesia aur Bharat ke liye kyunki isme Ramayan ki kahani iski deewaron par ukhri gayi hai.
1: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
0: Mujhe pura vishwas hai ki ye yatra Indonesia aur Bharat ke logo ke beech mitrata ko aur adhik mazboot karegi. संस्कृति एक ऐसा पुल है जो देशों को जोड़ती है, एक दूसरे को बढ़ावा देती है और हमारे भविष्य के लिए विश्वास का निर्माण करती है।
1: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik India.
0: Is avsar pe jo conservation aur restoration ho rahi hai Candi Prambanan ke dono desho ke beech mein Indonesia aur India ke sath ho rahi hai.
1: Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas kunjungan kenegaraannya di Indonesia kali ini selama 3 hari. Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, semakin erat, dan terus menghasilkan kerjasama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat kita. Terima kasih.
0: Indonesia ki sarkar aur Indonesia ke logo ki or se main mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ka Indonesia ki 3 din ki rajkiya yatra ke liye hriday se abhar vyakt karta hoon. हमारी कामना है कि इंडोनेशिया और भारत की मित्रता और अधिक मजबूत हो और गहरी हो और हमारे बीच का सहयोग दोनों देशों के लिए वास्तविक और परस्पर लाभदायक परिणाम देता रहे। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: Next, we kindly invite the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi, to deliver his press statement.
3: मेरे परम मित्र और इंडोनेशिया के लोकप्रिय राष्ट्रपति प्रभोवो जी,

0: उनके साथ यहाँ आए हुए मंत्रिपरिषद के सभी वरिष्ठ साथी, इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, भाई मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वड़नगर में हुआ, हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है, और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी, काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला, मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, माय डियर फ्रेंड प्रभोवो जी, and all the members of the ministers who have joined us today. It has been a great privilege and a matter of great fortune for me that in my life I've had several moments where I've had the opportunity to connect with Lord Shiva. I was born in Vadnagar in Gujarat, which is home to a very famous Hardkareshwar temple in Gujarat. Also in Somnath, Gujarat also is home to Somnath temple, the first of the Jyotirlingas. And I personally have undertaken the responsibility to redevelop that temple. And my political arena, my constituency of Kashi, is also home to Kashi Vishwanath. And I have been privileged to enjoy the blessings of Kashi Vishwanath. I have also been personally involved in the redevelopment and restoration of Kedarnath temple, Ujjain Mahakal temple, and today at this very holy venue where the presence of Brahma, Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva have blessed us for 1,200 years. This is a venue that displays the shared cultural heritage between our two nations. I am also extremely privileged with my dear friend to begin the process of restoration of this magnificent temple complex. Thank you very much for this opportunity.
0: Mere liye bahut sukhad anubhav raha. Meri yatra ka aaj teesra divas hai, lekin yahan ke jeevan mein, yahan ki baaton mein, yahan ki hawa mein एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है, इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
1: दिस इज माई थर्ड डे हियर इन इंडोनेशिया। ड्यूरिंग माई थ्री डे विजिट आई हैव हैड अ वेरी वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस स्टेइंग हियर। I could feel the fragrance of the life, the liveliness of the people, the cultural heritage of this nation, The cultural heritage of this nation reminds us of the fragrance of cultural heritage that we have back home in India. And it is this cultural heritage that joins our two nations together. And for over 1,200 years, the people of this land have preserved this cultural heritage with commitment, perseverance, and devotion. I would like to thank all the citizens of this country for preserving this cultural heritage and all the governments and administrators who have made contributions in this regard.
0: Agar main Lhasa mein Kailash Mansarovar ki yatra karta hu, aur aaj main Indonesia ke is pavitra temple mein aata hu, main dekh raha tha ek hi gunj, Mahamrutyunjay jap yahan ho raha tha. ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था. यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था.
1: Whether it is doing the Kailash Mansarovar Yatra in Lhasa or coming here in this sacred temple here in Indonesia, I could hear the sacred mantras of Mrityunjaya reverberate. Om Namah Shivaya reverberate. This is our shared cultural heritage.
0: और मैं देख रहा हूं कि योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है.
1: एंड इन योग्यकर्ता टेंपल, दिस टेंपल, मैग्निफिसेंट टेंपल कॉम्प्लेक्स, we are undertaking the renovation work. This is also a UNESCO World Heritage Site. I can assure you, after our joint efforts at renovation, the number of tourists and devotees from India will grow exponentially in the times to come.
0: Duniya ke dur dur kshetron mein kahin par bhi jaye, hame kahin na kahin Bharat ki sanskritik virasat ke darshan hote hain. Ye pure Southeast Asia ka दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है.
1: एंड व्हेनेवर वी ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, वी कैन सी ग्लिम्सेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. टुडे हियर आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ ऑफरिंग प्रेयर्स एट साउथ ईस्ट एशिया सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल कॉम्प्लेक्स.
0: इस मंदिर में भगवान शिव, माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं. सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है. आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है. ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ.
1: दिस टेम्पल हाउसेस द सेक्रेड आइडल्स ऑफ लॉर्ड शिवा, गॉडेस दुर्गा एंड लॉर्ड गणेशा. फॉर सेंचुरीज devotees have worshipped here with deep faith and devotion. Today, I too had the privilege of offering prayers in the most traditional manner and in offering my respects in this sacred temple. This has been one of the most sacred, one of the most remarkable and devotional moments of my life.
0: Mitra President Prabhu ji, unke saath yahan aane se ये आयोजन मेरे लिए विशेष हो गया है.
1: दिस ओकेजन,
0: मैंने यहां ईश्वर से भारत इंडोनेशिया की मित्रता को मजबूत करने, हम दोनों देशों के नागरिकों के कल्याण और दोनों देशों के तेज विकास के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है, भक्ति भाव से पूजा की है.
1: This occasion is even more special because I had the opportunity to visit this sacred temple complex along with my dear friend President Prabowo. I prayed here for the stronger ties between India and Indonesia, for strengthening the friendship amongst our people, for the well-being of the people of our countries, and for the rapid progress and prosperity of our two nations.
0: मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे. और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है

0: कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: टुडे एंड आई वुड लाइक टू कन्वे दैट प्रेसिडेंट प्रोबोवो बीइंग अ सोल्जर हिमसेल्फ ही नोज हाउ टू प्लान थिंग्स। सो व्हेन ही हैज प्लान्ड दिस रेस्टोरेशन देयर इज अ क्लियर स्ट्रेटजी and with this planning I am sure that the restoration work will happen ahead of time. And today my friend President Prabowo also made me promise him that we will finish this work before 2029, and I need to make a return visit once again to Indonesia to inaugurate the temple complex after restoration. And in front of all of you, let me reiterate my promise: with our joint efforts, we will finish this work before 2020.